सुचा गिरक्यों कोई ना पेटियों जाए सुचा होए के जीविया लगा पढ़न सलोक कोती जा सटिया किस लगा दोख अन्न देवता पानी देवता वैष्णो देवता लून पंजवा पह गिरता होवा पाक पवित पापी सुदंगटियां थुका पया दित जित मुख नाम ना उतरे।

चरण कमलायत नवास बख्शना सरदार इंद्रजीत सिंह जी आप जी दे हजूरी विच लंगरा लई बेअंत माया आदर करदे कवलीन कार जी पुत्र दी दात लई बेनती करदे।

चढ़दी कला बख्शनी। अब गीत सलूजा जी लंगराले पंज सौ रुपया आदर कर दे, परिवार विच सुख शांति दे, रोगता चढ़दी कला बख्शनी।

तीन लोग जाय जाय कर रे नाम सजाव दोहरा सकल द्वार को छाड़ के गए द्वार द्वार बाहे गए की लाज अस गोविंदास द्वार दोहरा राज करेगा खालसा आके रहना कोई।

चतर चकर वर्ती चतार चक्र भूते स्वयंब सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते देख तेग फतेह सुरसवेदरंग आप तज अज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख जी सहाय दरबार में तुर दरबारा सच खन वसै निरंकारा लक्ष्मी कड़े तुमरे दरबारा सर्व देवते कर नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर अवतार जगमग जोत बिराज रहे श्री अब चल नगर अपार सच खन के दरबार।

जी गुरु गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हाजरिया बढ़ते हुए कीर्तन दे सत्कार जो संगता लो बिंद माया हाजर हो जिस खजाने विच माया हाजर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला उसना देह रखता बख्शनी आसा मनसा संपन्न करनी यात्रा सफल करनी।

नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाभ कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब।

ऐसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताहि मैं समाहिंगे। कूकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है। किते गंग बासी किते मदीना मकानी वासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत किते भूम मैं गड़त किते सुआ पे चढ़त किते दुख को भरत है। ज्ञान मैं उड़त किते जल मैं रहत किते ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआजार बोझ हारे वाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन।

नरेखं न मोहं न क्रोहं न द्रोहं न द्वैखं न कर्मं न भर्मं न जन्मं न जातं न मित्रं न सत्रं न पितरं न मातं न नेहं न गेहं न कामं न दामं न पुत्रं न मित्रं न सत्रं न भामं लेखं बेखं जोनि स्वरूपं सदा।

रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न बर्मंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग जो निस्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशीय छेदंग छयाद अद्वया विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो।

अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सभूते भविखे भवाने चित्रे नारायंग नरंगं नरूपं नरेखं नलोभं नचोभंग भूतं अभिखं नसत्रं नमित्रं ननेहं नकेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र स्नेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजोनीय छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं अभय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न बर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न ब्रासंग न भेदंग न बर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध बिरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभादनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्त यथा विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न वाक्ये न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आद रूपे कहूँ गंज के मंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म मलूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज

देह दुखं कहूं औखधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जा जगंद्रव की नर कहानी कहूं राजसी सादगी तामसी हो कहूं जोग विद्या थरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूमि की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जस विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं गोग की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध सेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राजसाजं कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश व्याख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारं कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं वीन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मलेच व्याख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल थाला धरे छत्र धारी कहूं राज

अनभूत तेज अंशित जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं ब्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग।

दीन जमीन जमा जे रचंग सर्वमकी नमका जेहराग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुयंग जे खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जे रचयंग छत्री छत्र चितंग जे राग न रेख न रोग वणंग जे द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो तस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूप इंद नगिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किए देव देव सराद पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जे तात न मात न ब्रात सुतंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे जम्प किन्नर जछ जुअंग।

नर नारण पुंसक जाह किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर अथाधिक पांत गणंग बहुभूत भवेख भवान तुवांग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमाकाश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भूमेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद।

चोद मतंगन गाद ब्याद नाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रे घरु गंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग भू भंजन गंजन आदि सिरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाछ भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज प्रतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंध दो मुक्ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नहीं नैग कृपा नित पान पर जय फोकर धर्म सब तज है एक चित्त कृपा नित को जप है तु या भव सागर कोतर है भव फूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं गोड़ वृत्ति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के चस के

है समस्त सिद्ध वृद्ध दास सदीव सर्व सात है अनाथ नाद नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग दाग दग है अभूत ब्रह्म भेक है न तात माद जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक से गेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्वभरण है जिमे जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराने अवकुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव कहो कैस पाइये जिमी जमान के बिके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानिए मकीन यो मकान अप्रमाण तेज मानिए न देह है न गेह है न जात है न बात है न मंत्र है न मित्र है न दात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जच है न गंधर्व है न

न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है। न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है। न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेख है, न कर्म है, न धर्म है, या जन्म है, या भेक है। न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुरीन है, पुरी

न सीत है न सोज है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण।

प्रभाव है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याध को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेखरार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धपति तपस्पति वनस्पति जप सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्तपे विशेखिय, बेअंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ पे किय, अगाध आद जीव की अनाथ बात मानिए, न जात पात मंत्र मित्र सत्र स्नेह जानिए, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल।

जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे ओ विराज धीराज राज प्रवीन जाछ गंधर्व देवदानो न भ्रम क्षत्रियन माहे वैसनंके विखे विराजे शूद्र भी वहनाहे गूढ़ गौड़ न भीर भी

सर्व सबद पतार के दर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस बन नहनेत पूरन होत सोद सोद हटे सब तुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर करब पढ़त पढ़त थके महाकव गर्द गाड़े अनंत हार हार कहे सबो मिल।

अवतार भूमका जले थले मेहमानिये जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र बालक शत्रु गालक दीन दयाल मुकंद अघाव डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतिपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुगता सर्व जुगता

दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आद देवा खंड भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आद देवा पार श्रीपत दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्न दाता ज्ञान ज्ञाता श्रभ मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोटेंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र ओमुख चार कोटेन्द्र उपेन्द्र व्यास नक सनत कुमार गाय गाय तके सब गुण चक्रत वे मुख चार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआ पर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोध सोध थके महासुर पायो नह पार।

को आत्मा स्वरूप है, कहां सृष्टि को विचार, कौन धर्म को कर्म है, कहो सकल विस्तार दोहरा, कहां जीतप कहां मरण है, कवन सुरक कहां नरक, को सुकुड़ा को मूर्ता, कहां तरक अवतरक दोहरा, को निंदा जुस है कवन।

आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप अत्य चंडासुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र विदुंड सन्मय गमथे दानो प्रहार नरक निवारण नदम उदारण उर्द अधे जय जय होशी मह का सुर मर्दन रम कपर्दन आद प्रते डावरूड वंके बर्ब वंके भुजा फरंके तेज बरंग लंकुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध चमके भूखण दमके अथित चमके फुंक फनंग जय जय उसी मैं खा सुर मर्दन रम कपर्दन दैत जिनंग चंडा सुर चंडन मुंड में मुंडन खंडे अखंडन खून खिते दामनी दमंकन दुजा फरंकन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार पिपरखण दुष्ट प्रकरकण पुष्ट प्रहरकण दुष्ट मथे जय जय ओसी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्धा थे दामनी प्रहासन सुछम दिवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोत प्रमाचन हृदय नराचंदर अमृते श्रोणंत अचिंती अनल विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय उसी मैं खासुर मर्दन पाप बिना संधरम करे अग ओघ निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण सा बाग बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अश प्रवाहन बोल निवाहन तेज तुलंग जय जय उसी मैं खासुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चार चर चमकारण चिच्छुर हारण धूम धुंकारण द्रव मथे दाड़वी प्रदंते जोग जयंते मर्ज मतंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य

प्रणासन श्रेष्ठ निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगमथा हे एक वृते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुर नर मुर्बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे गावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय ओसे सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण नदम उदाहरण तेज प्रकरण दुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय ओसी शस्त्र प्रकरण आद अनिल अगाध अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी दुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामने दमंके के हरलंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय ओसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रतन सुंभ मथे बारज बिलोचन ब्रतन विमोचन सोच पिसोचन कौज कसे दामने ब्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला ब्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय ओसी मैं का सुरमर्दन आद नाथ अगाध ऊर्धं घंट का बिराजे रुझुन बाजे ब्रम्ब बाजे सुनत सुरंगो किल सुन लाजे किल बिग बाजे सुगूप राजे मत उरंग दुर्जन दल दजे मंतन रिजे सवय न भजे रोह रणंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद कुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये दुमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रदाहन गाढ मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध कते कत्रियाण कतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध कते ब्रडलाज बिहंडन चछुर दंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुर नर प्रतिपारण पति दोदारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होशी मैखा सुर मर्दन बेसो विदुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दान वी प्रकरखण सर्वर वरखण दुष्ट प्रदर्खण वितल तले अष्टायद वाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ कते जय जय उसी मैं का सुर मर्दन आदनाद अकाद वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सार

कारण करीली गर्भ कहिली ज्योत जतिली तुंद मते अष्टायद चमकन सहस्र जमकन दामिन दमकन आदवृते डुकडुकी दमंके बाघ बंके भुजा परंके शुद्ध गते जय जय ओसी मैं कासुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति सुधारण एक वटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चारे नरक निवारे पति दोधारे मुंड मथे जय जय ओसी मैं कासुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदन वर्दन बिडाल पदे सरधार विपरखण दुर्जन धनखन अतुल अमरखण धनम धुजे धूमराज विदुंसन सुंडत चुनसन सुंभन पात निसुंभ मथे जय जय ओसी मैं कासुर मर्दन आद अनिल गाद कथे।

है कवन जात जे शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चिहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरह सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिजता। जल थल महीप बंधन दुरंत जेह नेद नेद निस दिन उचरंत पायो न जाय जह पैर पार दीनान दुख तहता उदार। कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेद नेद निस दिन उचरंत।

दीनन की प्रतपाल करें तो संतु बारग नीमन गारे पक्ष पशु नग नाग नरा देव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोकत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार है। दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मैं दल डारे खंड अखंड बचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत वेद कते वेदुचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव कपे अंग वेव न वेव लख्यो ब्रह्म से उपरमाए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत स्यो किंसरी पदमापत पाए। आद अनंत अगाद अद्वेक सो भूत भविख भवान भय है अंत विहीन नाथम आबाद अगाद दुख छिद्र छय है। लोगन के करता हरता जल मै तल मै भरता प्रभ है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर।

तह भेद बतावे खोज थके सब ही कुछ या सुरहार परे हर हाथ न आवै। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद गते न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमावत से दसना दसनंदन ध्यायो। ध्यान धरो ते को मन में जे को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निर्पान सब बचहारे। भेद न पाए सके उन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साक न सोग न संग तिहारे। आद अनाथ अगाध अपेकत वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे। देश फिर कर वेश बोधन के सरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख गारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्व प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासत्रन के साल है। दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के दिवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे गुलाय माल देव गोर कर तेज गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना कि तेग बंध यार बके यार भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है। मरहटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या करे दृढ़ वै तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आगे में चलत है। रूह के रूहेले माग देश के मंगेले बीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गोन गावे जिन मचीन के शीस न्याव तिपति दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो हिदायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल स्यों फलत है। देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साधा दीन कहियत है। पाइय न

अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा रे छपा कर कैसी छब काल के गोल के हंस निशी हरो मही रसी हो सना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा के सी रामपुर सूरा सी सुरंगाबाद नी के रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़ गिरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है। हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधर बकान सी बिलंदाबाद कीरत तिहार के उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है। भकरी गंधारी गोर गखरी कर देजाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूर्व पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्वठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है। पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र ते अतापी नाथ।

सत्संग जी गुरु साहब जी का लंगर तैयार है, प्रसादा शक्कर गुरु महाराज दिया खुशियां प्राप्त करो। बोले

0: बैठो के पास खाकन चढ़ाइया गुरबामण थिया ओह माओ चढ़ पया वे तगा गया महला पहला
1: लख चोरिया लख जारिया लकुड़िया लख गा लख ठगया पहना में आराधना जीना तक पाक दिया।